0: पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है।
1: Ujala Radio, सबसे बड़का वाला 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala

मेहनत किसका खेल मास्टर का, यहाँ की बात कर जाती, यहाँ की बात कर जाती, नसीहत कारीगर होती नहीं कुछ।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोल मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है DAB+ तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे वहां तक हम आप सभी को प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं। हमारे प्यारे श्रीमलो, हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9 3 0 9 0 7 पर आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए, या तो हमारे वेबसाइट पर आप जाइए www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा।

0: वेल तुम न जानो किस जहां में आप खो गए। उस तरह से लता जी के आवाज में गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: कुछ पुरानी कुछ नई। मुकेश भैया का हृदय कितना विशाल था, कितना प्रेम था उन्हें अपनी छोटी बहन से। एक दिन अमेरिका में कार्यक्रम शुरू हुआ तो वो बोले,
2: हम तो आज भी हर रोज की तरह, हमेशा की तरह उसी गाने से ये महफिल शुरू करेंगे। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मगर इससे पहले जिस देश में गंगा बहती है उसकी एक तहजीब है, और वो ये है कि जहाँ लता मंगेशकर जैसा महान कलाकार परफॉर्म कर गया हो, उस स्टेज पर किसी दूसरे कलाकार को कभी आना नहीं चाहिए। मगर उन्होंने बड़ा भाई बना के मेरे ऊपर इतना जुल्म कर रखा है कि हरेक किस्म की बदतमीजी मुझे इजाज़त दे रखी है।
3: भाई और बहनों, मुकेश भैया प्यार में ना जाने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर जाते हैं, हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूँ। मैं शायद इस तरफ गाने के लिए कभी नहीं आती अगर मुकेश भैया नहीं लाते तो। ये एक साल मेरे पीछे पड़े रहे और जिद करके मुझे यहाँ ले आए। मुकेश भैया, मैं आपके बहुत आभारी हूँ। मुकेश भैया मेरे बड़े भाई हैं और मैं हमेशा उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ, तारीफ नहीं।
2: लीजिए, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है।

रावल होटो पे सच्चाई रहती है, जिस देश में गंगा बहती है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुनने वाले लता खांसकर के लता के कुछ डायलॉग आप लोग सुने, और मुकेश जी के आवाज में गाना जो आप लोग सुन रहे थे। यू आर उजाला रेडियो है।

मुकेश जी के वहां उसमें गाना जी प्रोग्राम में आप लोग सुने अल्लाह जाने क्या होगा आगे। उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनेमलो और हमारा दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक दिन में 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक।

दिल की नजर से कोई हमें बता दे वेल कितना मोई कितना विशाल लता एंड मुकेश जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने यार, दिल की नजर से तो हर एक बात होता है। एक मंजिल राही दो यार।

राहुल एक मंजिल राही दो और फिर प्यार कैसे ना हो, इस तरह से लता एंड मुकेश जी, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

राहुल, अरे यार सैया छोड़ दे, और इस तरह से मुकेश जी एंड लता जी बोले तेरा हाथ ना छोड़ू तेरा साथ ना छोड़ू, बोले तू कहाँ जाएगी। राहुल कितना विशाल कितना मोय।

अल यार नजर नजर से बात हो रही है प्यार की, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और वो भी खास करके लता और मुकेश जी के आवाज में, उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

गोरा कागज था मन मेरा। इस तरह से लता एंड किशोर कुमार की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और हमारे प्यारे सुनने वालों उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, चाहे जहां पर प्रोग्राम को आप लोग सुनते होंगे वहां तक हम आप सभी को प्यार से दुलार से दिलो जान से स्वागत कर रहा हूँ अपने ही प्रोग्राम में।

वल यार देखा देखा एक खाप तो सिलसिले हुए अवसरों से लता एंड किशोर कुमार एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

वेल वेल यार, मोहब्बत बड़े काम की चीज है। अवसर से लता किशोर एंड येसुदास जी के आवास उजाला रेडियो का प्रोग्राम वेल परदेसिया परदेसिया। यू आर उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, चाहे यहाँ पर उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुनते होंगे बहुत ही प्यार से दुलार से। यहाँ से प्रोग्राम हम बना रहे हैं आप सभी के लिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9 20 9 9 7। और हमारा दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक, दिन में 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक।

tour, हमारा वेबसाइट है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा।

वेल यार ए हम भी कुछ बनाएंगे तेरे घर के सामने। बोले कि घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, लता एंड मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। एंड इस बार कितना प्यारा वादा है यार।

वेल वेल यार, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों में। और इस तरह से लता एन मोहम्मद रफी साहब के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे।

वेल वेल तुम जो मिल गए हो, इस तरह से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे। इस बार 100 साल पहले यार

100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल रहेगा, एंड इस बार तुझे जीवन की धूर से बांध लिया यार।

दिल ने दिल पुकारा, वही बात हो गई, और बोले जो डर था वही बात हो गई। कितना मोई, कितना बिसाओ, अति सुंदर गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने।

यार मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा जो मिल गया होता। इस तरह से लता और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप लोग सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम। हमारे प्यारे सुनने वालों,

धीरे धीरे चल और बोल कहीं हो ना जाए रात। और इस तरह से लता और मोहम्मद रफी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनमलू उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9204909007 पर आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए यार। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो किशोर कुमार के आवाज में गाना इस तरह से आप लोग सुनेंगे।

वेल यार, नीले नीले अंबर पर अवसरों से किशोर कुमार के वंश में गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। इस बार यार छूकर मेरे मन को, तूने क्या किया इशारा यार।

रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनमलो, मैं हूं सुभाष और हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9203 9907। अरे काम काज के लिए आप लोग तार कर सके हैं। हमारा दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक, सुबह में लेकर 10 बजे लेकर शाम में 3 बजे तक।

युवर उजाला रेडियो है और जहां तक ये आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को प्यार से दुलार से दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं।

वेल यार, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है और इस तरह से कि कुमार सानू जी की आवाज में गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे।

इस तरह से कुमार सानू जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सिनेमा कितना विशाल कितना मोय और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस तरह से होंगे और हम सोचे कि गाना भी तो लोग के मोय लगेगा और इस तरह से

ये देखा तो ये जाना सनम, लता एंड कुमार सानू जी के आवाज में गाना जी प्रोग्राम में आप लोग सुने। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनवरों। कितना मोई कितना विशाल बोली इसके बोले तुझे देखा तो ये जाना सनम।

हम आपके दिल में रहते हैं पहले भी न कहा। लो आज हम कहते हैं यार, हम आपके दिल में रहते हैं। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। कुमार शानू एंड अनुराधा पौलवल की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे, हम आपके दिल में रहते हैं यार। यू आर उजाला के दिल में आप सभी रहते हैं।

इस तरह से गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। और इस तरह से गाना जो आप लोग सुने कुमार सानू एंड अलका याग्निक जी के आवाज में। अब की बार कुमार सानू एंड साथ देने वाली है आशा जी के आवाज में गाना जी प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। बाल चेहरा क्या देखते हो यार।

बेल बेल यार, चेहरा क्या देखते हो, मेरे दिल में उतर कर देखो ना। अनुसरण से आशा एन कुमार सानू जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

लाल कितना मोय कितना विशाल कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बोले बाहों में आ जाओ, इन सपनों में बोले खो जाओ। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुनो बोलो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, फिल्म का नाम धड़कन और गाने वाले कुमार सानू जी।

0: वेल यार, दो दिल बोले मिल रहे हैं एंड वो भी बोले चुपके चुपके यार,
1: चुपके चुपके,
0: मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं। उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्यारे सुनने वाले, हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9 20 9 9 9 7 पर आप लोग तार कर सके हैं।

वेल, दो दिल जो मिल रहे हैं चुपके। और चलिए अब की बार प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है उदित नारायण जी।

ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए. उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. वीरेन यूली बस्तात 40 यार.

नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

अफसोस करोगे, अफसोस करोगे, जरूर अफसोस करोगे। स्टेविन बेन की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। जोहेब हसन, जोहेब हसन, मैं जाना

जिंदगी से न जाना, क्या क्या गीत है। उजाला रेडियो पर इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए उजाला.nl।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: सुनने वालों, आशा है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आए हुए होंगे। और अगर आप हमें फिर सुनना चाहें तो आपको पता ही है, उजाला रेडियो पर आप हमेशा हमें सुन सकेंगे। फिर मिलेंगे।
1: My name is New Open. Oh, yeah.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो।

है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, 4.

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net।

0: अदनान समी और आशा भोसले जी, इन दोनों की आवाजों में गीत को आप सुने। और अब फिल्म खामोशी का गीत पेश है।
1: ना, जो सच हुआ है मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं। है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

आई बहारों की शाम मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म वापस से गीत आप सुने। इट्स यू आवर उज्जला रेडियो।

सारा जमाना हसीनों का दीवाना। इसके बाद अब आप एक गीत सुनेंगे लता जी की आवाज में, फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त।

अल्लाह, ये अदा कैसी है इन हसीनों में, लता जी की आवाज में। आप सुने फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त, एन इलास्टिक नार द लुक्स द एंजल्स रेडियो उजाला।

प्यार हुआ इक्वल रार हुआ और फिर भी क्यों डरता है दिल। लता जी के साथ मन्ना दी से आप सुने गीत, फिल्म का नाम श्री 420। और सुनने वालों, अभी हमने कहा कि ये आखिरी गीत होंगे आज का प्रोग्राम में, लेकिन अभी कुछ समय और बाकी है तो एक गीत और सुना देता हूँ।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा।

0: Radio Pujala Radio. Pujala Radio, de grootste van Nederland. You are wherever you are. You are. Pujala, toch.
1: ये उजाला रेडियो है।

और यूं ही रोने नहीं दूंगा, अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। फिल्म एनिमल का गीत को आप सुने। उजाला रेडियो पर सुनने वालों, एक और गीत

तू हाँ तू मानू मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। गायक किंग की आवाज में एक और गीत पेश है अब। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से निकाला हुआ

0: हम सफर, हाँ, मुस्कुराना भी तुम ही से सीखा है। गाने वाले अकील सचदेवा एंड मंशील गुजराल, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से निकाला हुआ उजाला रेडियो पर आज सुनाए गए।
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

93 से आप सुने सुपर हिट सॉन्ग टेढ़ी अखिया का जो काजल मुझे तरपावे मॉय उजाला रेडियो पर आप सुने हैं इस गीत को एंड न्यू मरहूम नदीम खान जी

और प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अभी आप गीत को सुने मरहूम नदीम खान साहब की आवाज में उजाला रेडियो पर। और अब किरण केदार, मैं दिल था अकेला अकेला।

और एक तो कम जिंदगानी और ऊपर से और कम है जवानी नेहा कक्कर, उन्हीं की आवाज में और साथियों से आप सुने उजाला.nl इन्फॉर्मेशन के लिए।

0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: अरे तक जरा तक,
1: जल्दी से बक, कहता है क्या वो दीवाने।
0: छोरी छोरी छोरिया,
1: जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा।

0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा।
1: होश करो तुम,
0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा। आशिकों की सुन,
1: छोड़ मेरी धुन, कैसे ही कर ले गुजारा।
0: आ आ आ आ चोरी, आ आ आ चोरी, आ आ आ चोरिया।
1: जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा।